We'll link a festivity offer. Our pound host, 1 वर्ष को 200 Mbps internet and net TV. साथ में dual band router, Nokia Beacon 1.1 mesh router और net TV set-top box. मात्र रूप 1200 प्रति महीना में. शर्त हरू लागू होने चाहिए. छिटो बने गई World Link.

0: तू अभी तक रेडी नहीं हुई?
1: क्या फायदा, वो तो आ ही नहीं रहा है।
0: तू अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में ऐसे जाएगी? खुश हो जा, वो आ रहा है और तेरे लिए एक सरप्राइज है। तू झूठ बोल रही है।
2: सच्ची।
0: अब मैं दिखाती हूँ उसे सरप्राइज क्या होता है, देखती जा।

0: Worldlingo festivity offer अब pound host एक वर्ष को 200 Mbps internet और net TV साथ में dual band router Nokia Beacon 1.1 mesh router और net TV set top box मात्र रूप 12 से प्रति महीना में सर्थरू लागू होने चाहिए छिटो बने गई Worldlink
1: दमोली FM 94.2 समुदाय को आवाज
2: आज तो रोदीमा पशुपति शर्मा हुनुहुन्छ रे
3: नि ए हो र उसो भए पञ्चल डोरी गाउनु पर्छ है

0: होली एफएम 94.2 समुदाय को आवाज।
1: ए बहिनी, घर त चिटिक्कै बनाएछौ हैन? यति राम्रो फर्नीचर को सामान कहाँबाट ल्यायौ?
2: कहाँबाट ल्याउनु नि दाई, हाम्रै व्यासचार किसान हार्डवेयर को पछाडी पट्टी रहेको आरती काष्ठ उद्योगबाट ल्याएकी नि।
1: हजुर, हामी कहाँ स्टील को दराज, कुर्सी, टेबल, साथै काठ को सोफा, दराज, पलाङ, पर्दा, कार्पेट, विवाह को सामान होलसेल तथा खुद्रा मूल्य में बिक्री गरिन्छ। आरती काष्ठ उद्योग,
3: ब्यास 4 मेन रोड, दमौली तनहुँ,
1: प्रोप्राइटर विष्णु कुमार श्रेष्ठ, फोन 98 16 16 13 26, 98 4 63 056 05, 98 19 11 36 27, 65 65 0

0: अलिसा, तिमीलाई थाहा छ नि है, म तिमीलाई कति धेरै माया गर्छु भनेर।
1: यो कुरा चाहिँ गोपिराख है।
2: यस,

World Inco Festivity Offer. Our pound host 1 वर्ष को 200 Mbps Internet और Net TV साथ में Dual Band Router, Nokia Beacon 1.1 Mesh Router और Net TV Set-Top Box मात्र रु 1200 प्रति महीना में सर्थ हरु लागू होने चाहिए। छिटो बने गई World Inco।